कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, अररम तररम दुनिया के कैसे कैसे गम, कहीं ज्यादा कहीं कम।

आज मेरा दूल्हा नहीं कम किसी राजे से, आज मेरा दूल्हा नहीं कम किसी राजे से, आई बारात बाजे गाजे से।

वो तेरे मंजिल के, वो तेरे मंजिल की तस्वीर बन जाऊंगी। मंजिल का पास है, मिलने की रात है, तू क्यों उदास है।

प्यारी प्यारी मगन मीठी मीठी चुभन प्यारी प्यारी तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए मुखाकत नसी।

चल मेरे दिल चले हम वहाँ, पैसे का लफड़ा जहाँ, ये तो दुनिया है व्यापार।

0: राम के मन में सीता का ध्यान, प्राणों की आरती, प्राणों की आरती जलाई है, जलाई है।
1: आज राम जन्म के

0: जाओ रे जाओ रे दुख जाओ रे ओ मुझे बाल माँ अब न सताओ रे
1: आओ रे आओ रे आओ आओ रे।

0: तू पुजाओगे जाओगे दुख जाओगे ओ मुझे बाल माँ अब न सताओगे
1: और आओ आओ आओ रे।

तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है घटा बरस जा।

तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा भाव है घटा बरस जा पवन तो झूम जा।